0: गुरु प्यारी साध संगत, अखंड पाठ प्रकाश हो चुका है। तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा जो शनिचरवार आ रहा है सैटरडे दोपहरे सुखमनी साहब पढ़ के उस तो बाद अपना अखंड पाठ का भोग पावांगे। आओ सब करो पाठ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की।
1: गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन।

परिकार तो सदा सलाम निरंकार परिये हाथ पैर तंदे पानी तो तय उतर सुखे मूत फलिते कपड़ होए दे साबुन लइए ओह धोए परिये मत

होई। जाकरता श्री टिको साधे अपदान सोई के करे आका के साला ही के वर्णी के दाना नान के अखण सबको आका एक दो एक सियाणा।

वहमोनिया मन मोहन सुरगा मच पायाले गाव रत्न पाए तेरे अर्थर तीर्थ नाले गाव ज्योत महाबरसूरा गाव खाणी चारे गाव खांड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सहित

जुगत के रंग तिनके नाम अनेक आनंद कर्मी कर्मी होय विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथ सोन पंच परवान नदरी करम पवे निशान का चबकाये उथ पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड काये हो धर्म ज्ञान खंड काय आखो करम केते पौन पाणी वसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे काट दड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन संबंध केते अखाणी केते अवाणी केते पाद नरेंद केते सुरती सेव केते नानक अंत नायंत ज्ञान खंड।

देखो कै पिछे पछताए तिथे घड़े सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सदा के शुद्ध कर्म खंड के बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महाबर सूर तिन मैं राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता मैं मामा है ताके रूप न कथ निंजाहे ना हो मरे न ठगे जाए जिनके राम वसै मन माए तिथे भगत वसै कै लोक करै आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड देखो कथे तायंत नयंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम त्वेत विकार वेखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बार तिरे सुनियार आयरन मत वेद हथियार।

तेरे भक्त सलाहन तुझी। हारे अनक अनेक अनंता तेरी, अनक तेरी अनकरे हर पूजा जी। तब तापे जपे बेअंता तेरे अनेक, तेरे अनेक पड़े वो सिमर शास्त्र जी। कर करे आखड़ कर्म करंता।

नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सुवारी सेवकन को सावगुन सुख दियो शत्रन को बल मोहद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बरे की पीर पछानत।

दुष्ट दोख ते लियो चाहे कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता किल विक सकल दे को हरता दुष्ट दोखियन को जय करता श्री दूजा पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मान वंशत फल पावे सोई दुख न दिसे व्याप्त कोई।

जब आए प्रभु को पियो जन्म तेरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब कह सुनाए कवि आज दोहरा ठाट पियो मैं जोर कर बचन का सन्याय।

परम सन्मान योग चुको चुक अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सारे वड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन गोद विच बैठ के मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामने दीवाना विच लड़ीवार विचार चल रही है वो विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहलां सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द की आपां विचार कर रहे हाँ वो पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन रचना तो उच्चारण किया होया। आसा राग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 414 415 उत्ते सुशोभित है। उस शब्द के चार पदे आपां विचार चुके हाँ। पंजवें पदे विच धन गुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते ने जहां नाम मिले तह जाओ। हे वाहिगुरु जी मेरी तेरे चरणा च अरदास है कि जिथे मैनू तेरा नाम मिले तेरे नाम की प्राप्ति होवे मैं उथे जावां। भाव यह है कि यह नाम फिर मिलेगा कितने। गल यह है पहले पातशाह जी कह रहे ने कि वाहिगुरु जी मैं उथे जावां जिथे तेरा नाम मैनू प्राप्त होवे तेरा नाम मिले। ये आपां फिर वह जगह लभीए जिथे परमात्मा का नाम मिलता है वह लभनी पेगी। थां वह गुरबाणी नूं ही आपां पुछीए। पंजवें पातशाह जी कहिंदे ने कहिण लगे अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरु दीनो मनतानी। अमृत नाम परमात्मा दा जिहड़ा नाम है वो आत्मक जीवन देण वाला है। जदों नाम दी गल आवेगी कई रूपां विच सतगुरां जी ने नाम नूं बयान किया है।

आत्मक जीवन देण वाला भी आख्या है, नाम नूं सुखां दा दाता भी आख्या है। बहुत उपमा सतगुरां ने नाम नूं दित्तियां ने। ते सतगुरु जी कहिंदे ने, कहिण लगे प्यारियो, इह जिहड़ा नाम है इह बड़ा कीमती है, बेसकीमती है, आत्मक जीवन देण वाला है। अमृत नाम परमात्मा का जिहड़ा नाम है आत्मक जीवन देण वाला है। जिहड़ा मनुख परमात्मा का नाम सिमरदा है उस मनुख की आत्मक मौत नहीं हुंदी। भाव यह भी ओ मनुख दुख विच सुख विच कदे भी अत दा निराश नहीं हुंदा, नहीं हुंदा, क्योंकि वो नाम नाल जुड़िया होया। नाम ने अंदर नूं संतोखी बना देना है। परमात्मा दे नाम तो बिना मनुख संतोखी नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया भी धन दौलत पदार्थ ये तो जिन्हें मनुख दे कोल वधदे जांदे ने उन्नी ही बंदे की तृष्णा भी नाल वधदी जांदी है। एक किसी बंदे का छोटा कारोबार होए वह 100-200 च खुश हो जाता, किसी बंदे का उस तो वड्डा कारोबार होए वह कहिंदे भी मेरे हजारां डेली बनने चाहिए, उस तो भी वड्डा कारोबार होवे वह कहिंदा भी मेरे तो 10-20 हज़ार डेली बनने चाहिए। कहण दा भाव यह है कि गुरबाणी कहती है, सहस खट्टे लख कूट धावै तृप्त ना आवै माया पाछै पावै, नहीं तृप्ति होंगी। पंजवे पातशाह जी कहते ने, बिना संतोख नहीं को राज है, पर संतोख देखना पेगा, संतोख आवेगा कि नहीं। गल ए है ना, ये रूट देखनी पेगी, ये जड़ देखनी पेगी, एदा मूल देखना पेगा। जे किते संतोखी बनना है, संतोख दा धारनी बनना है, ते फिर ए मिलेगा कितों संतोख। ते पातशाह कहते ने, अमृत नाम निर्मोलक हीरा, निर्मोलक बड़ा कीमती हीरा है परमात्मा का नाम। जो तृष्णा की अग लगी हो ना, फिर गुरदेव कहते ने, कह लगे प्यार ओ, फिर यह जिहड़ा नाम है यह जल का काम करता है। नाम जल, क्योंकि तृष्णा के अंदर भांबड़ मचते ने। तृष्णा एक अग है। अग दा भाव यह भी जिस बंदे दे अंदर तृष्णा वधेरे लगी होवे अंदर इवें मचदा है जिवें अग मचदी है। हुण फिर अग की करदी है, बाहरली अग भी अंदर नूं साड़ के रख दिंदी है। किते अंदर अग लगी होवे उह अंदर नूं साड़ के रख दिंदी है। हुण बाहरली अग लगी होवे उस नूं बुझाण दे तां, उहनूं शांत करन दे तां बड़े उपराले मनुख कर लेंदा है, पर जिहड़ी अंदर तृष्णा की अग लगी हुंदी है, यह जिहड़ी भुख लगी हुंदी है, यह नहीं छेती बुझदी। यह दुनिया भी किसी तरीके नाल, बाहर दी तरीके नाल नहीं बुझदी। ते गुरबाणी नूं ही पुछिए, सतगुरु जी जे अंदर तृष्णा की अग लगी होवे फिर वह किवें बुझ सकती है। सतगुरु जी कहिंदे ने, तृष्णा बुझै हर कै नाम। बस इको एक तरीका है, नाम जल है। जदों अग ते पानी पाया जावे, जल पाया जावे, ओ बुझ जांदी है। अंदर अग लगी होवे बंदे दे ते जदों नाम जल दे छिट्टे पैंदे ने ते फिर ओ अंदर दी अग बुझदी है। होर किवें बुझदी है? जदों गुरबाणी दा पाठ होवे, कीर्तन होवे, कथा होवे, इवें मनो कि यह नाम की बारिश हो रही है, परमात्मा के नाम की बारिश हो रही है। जिमें जिमें मनुख सतगुरां की पावन बाणी नूं भावना लैके सुनदा है, कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, अंदर नूं बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। फिर मन कहिंदा, मना कि थोड़ी देर होर पाठ सुन लईए,
ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਮੰਤਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੰਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ

भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज कै पचमुआ चारों वेदों माहे। हर है खांड रेत मह बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई,

निम्रता वाला, हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, सुखी बसा मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। हंकार ची सड़ गए जी, उर्ज उर्ज के पछम हुआ उहदे नाल जुड़ के हंकार ही हो गया, मैं ब्राह्मण हूं। मैनू कई बार चाग लगता कि आपां मंदर विच गल नहीं कर घर कर गई मैं सिख हूं। सच्ची तुहानूं दसां किते ओ हौमे दा रूप ते नहीं धारण करी जी साडा सारा पसारा, डरदे क्यों ने लोग साडे तों? सिख कोल क्या तां ठंड पैणी चाहीदी है। गुरु साहब कहिंदे ने कि सुखी बसा मस्कीनिया आप निवार तला, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले, जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाना मैं जोबन वंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को कर्म वंत कहावे, जन्म मरे वो जोन परमावे, तन भूमिका चो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, अगे कीटी हो कह खाए कर कृपा, जिसका हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्त आगे सुखवावे। एक साडे बहुत सियाने विद्वान होए सन जी, ज्ञानी अर्जन सिंह, शायद तुहां नां सुनिया कि नहीं, 50 साल के करीब उस बंदे ने थाईलैंड जिहड़ा बैंकॉक गुरद्वारा उत्थे ग्रंथी की सेवा की जी। उहदे उहनां वर्गा ग्रंथी नहीं कोई मिल सकता, जो रूल वह बना के गया गुरद्वरे के, उस निके जे संविधान नूं पढ़ना चाहीदा है। मैंने एक बारी कापी तो कितों मिले से, वह देंदे नहीं वैसे। ज्ञानी अर्जन सिंह जिस दिन उन्हों का चलाना होया संस्कार वेले, जिहड़ी अग आई सी वह राजे दे घरों आई सी, जिहड़ी बुद्ध की लाट बलदी पई सी। भाई साहब जी का जिस दिन संस्कार होया, क्या कमाल सी जी, वह उत्थों की बहुत सोहना संविधान से। उत्थे कदी किसी के घर च सवेरे अखंड पाठ नहीं सी रख सकता कोई, क्योंकि अमृत वेले की गुरुद्वारे की संगत नहीं घटनी चाहिए। प्रचारक कोई भी आवे उनू दिता जांदा सी भी तू महीने च केड़ी कथा संगत नू सुना के जानी है, ते कई कई सालां दी कथा रिकॉर्ड ने सानू ते कोई देंदे कोई। मैं आके कबीर साहब शुरू कर लिया, मैनू किसे कहा थोड़ा भाई साहब आ बोलियो, उत्थे बकायदा सी ये कथा हो चुकी है, ते गुरु दी कथा तो बाहर कोई गल नहीं करनी, स्टेज उत्ते खलो नहीं सकते, याद रखियो। स्टेज ते घसर के जाइदा सी, क्योंकि गुरु का अदब रखना है। उन्होंने एक किताब लिखी सी, एक ओट एको आधार, छोटी जी किताब है, पढ़ियो कि मिलेगी, छोटी छोटी घटनावां ने मैनू बड़ी चंगी लगी जी उन्होंने वो किताब। उहदे च उन्होंने निम्रता का एक जिक्र किया, गरीबी की है। आपनू पता जिथे ये गुरुद्वारा पुतली घर है जी, अमृतसर है ना, पुतली घर ही है ना गुरु अर्जन देव जी का, निम्रता की है। विखावा मैं तुहानू बेनती करा, विखावे लई भावें सारी जिंदगी बंदा नक् रगड़ रगड़ के अगली कुरुंबल खत्म कर लै ना, गुरु ने प्रवान कोई नहीं करना। गुरु तो अंदर दी जानदे ना, काबल तो संगत आई सी, थके सन बजुर्ग, चल चल के हड पैर थके हुए सन। उस रात धन गुरु अर्जन देव जी आप उन्हां दे विच पहुंच के रात उन्हां दी मुठा चापी की सेवा करते रहे। ज्ञानी अर्जन सिंह लिखते आ कि जदों सतगुरां ने सेवावां मंडियां, क्योंकि सारी जिवें तुसीं टीम बना दे विया, कम तू करना करना, सब नूं बण दित्ता, लंगर का प्रबंध कौन करेगा, बिस्तरियां का कौन करेगा, किस्तां सारा होगा। अखीर ते दो गल्लां रह गईआं कि जोड़ियां का प्रबंध कौन करेगा, ते भांडे मांजण की ड्यूटी सतगुरां ने क्या दे दित्ती है। किन्हां ने कहन लगे जोड़े असीं साफ करांगे, भांडे गंगा जी मांजिया करनगे। मैं बेनती करां गल्लां कहण वालियां नहीं, गरीबी गदा हमारी, कीटी कोई कह खाए दर्थ, मैं कला कीड़ी अर्थ नहीं कर रहा। जिन्नी देर तक ब्राह्मण ब्राह्मण कूकना, ज्ञानी ज्ञानी कूकना, हाथी मत बन, जिन्नी देर तक निम्रता नहीं आती प्यारे, वो नॉलेज हो सकती है पर रसिया नहीं हो सकता। गुरु साहब कह रहे ने कि देखो, हर है खांड राय रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाए, कह कबीर गुर भली बुझाई, समझा दिता कीटी होए कह खाए कीड़ी होके। हुण अगले दो श्लोक ध्यान न सुनियो, थोड़े अर्थ मैं कर देंगा, कल नूं आपां

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुर
Guru.

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

संत दर्द दुख लथा, नाम संत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसै, संत का सांग विड़ भागी पाई।

त्रापे पेख्या नेक अगर नहीं बुझे कोड़े पाव दर्ग नहीं सिजे छूड़ सनाही उपे आल मोहे भयापे माया जाल बरकत उद सगली जाम जाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जब दुख जाय नानक बोले सह सुपाही।

में शोर है। जेको जन मरण ते डरे साजन की सरनी पर जिह जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ता कै बल मल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जा का मिटै अभिमान।

देव चा भगवंत सगल समागरी तुम रह सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै

मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या राथ तीयस बहतरा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्यापसी उपर करत गुमान, आस थिर भगत साध की शरण, नानक जाप जाप जीव हर के चरण, मिथ्या सरवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है,

जय। जय प्रसाद सब को माने मुखता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पत सेती कर जावे। जय प्रसाद अरु कंचन देही लेव लाभ तिस राम स्नेही। जय प्रसाद रवला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकै मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जय प्रसाद रिको ना पहुचे मन सास साह सिमरह प्रभु उचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद

सारी जय प्रसाद बाग मिलखत नाराग परोय प्रभ परे मना जन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत साध तिसे त्याई तिसे त्याए जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रखै जय प्रसाद करे पुन बोदान मान आठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू अचार विभारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जय प्रसाद रस सुंदर रूप सो प्रभ सिमरव सदा अनूप जय प्रसाद त्रिनी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद

सावधन बेरा साध संग पाए नाम रतन साध कै सांगे कुपर जतन साधक महिमा बरने कौन प्राणी नान साध की शोभा प्रभ मह समानी साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा परफुलै

योग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुनह ते तब खयाने साध की उपमा देह गुण ते दूर साध की उपमा रही पार पूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूच ते मूची साध

पुराण पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुमदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृढ़ अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत ब्रह्म ज्ञानी अभुत्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद।

ज्ञानी का बर प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी कहो खोजे हे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कसे न जाए दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी काम तरह पार नानक, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रभात, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आवृंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक, उर तार है जो अंतरनाम, सर्व में पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर।

प्रभ सोए। कई कोड़ पार भ्रम के दास तिन होतया तुम बृंगास। कई कोड़ तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे। कई कोड़ नाम रस पीवे अमृत सद सद ही जीवे। कई कोड़ नाम गुन गावे आ तुमरा सुख सह समावे।

करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान कौन बस ताई तेरे संग लपट रहे हो रस डूबी पतंग। राम नाम जबर दे माहे नानक पासे ती कर जाहे जिस वखर को लै तू आया। राम नाम संतर कर पाए तर मान लेहु मन बोल। राम नाम हृदय में तोल लाद खे संते संग जा।

राखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गांड है। गुर पूरै ताते है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहु काम आन ते आग जप होर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव आव जप हवर नाम जपावो भगत पाए तरी है संसार बिन भगती तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख कावत नास नानक नाम जपो गुणतास बजी प्रीत प्रेम राह चाव मान तनिया त्रिह स्वाव। नेत्रोपेख दर्श सुख होए मन बिकसे।

जनान कापहि वृद्धावस्थपदि। जब कारिहु कहना दृष्टे ता पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन संसमाल तब बैर विरोध के संगमाल। जब इसका मरण चेहन ना जापत तब हरक सो कहो किसे व्याप्त। जब अपने आप आव पार ब्रह्म तब मुह कहा किसो होत पर में अपन खेले आवृति। जनान करने हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी। तब बांध मुक्त कहो किस को गणी। जब एक रग में पार तब नरक सुर कहो कौन उतार। जब निर्गुण प्रभु सहि सुपाय तब शिव सकत कहो कित ठाय। जब आपे आप अपनी जो धरे तब कवन निडर कवन कद डरे। आपन चलते आप करने हार नानक ठा गुरग में पार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कह किस होए। जब अवगत गोचर प्रभु कहा तब चित्र गुप्त के पूत लेखा। जब नाथ ने अंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही आवी चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख

सुमाए एते सुना ही बुरा और कह किने कस कर आप लाक तुद निकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोत अपन संग राज ताई गत विद कहीं न जाए दूसरे होए दसो जी पाए तिसका किया।

अजीत है, अभीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरश्रीक है, नरलम है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, पीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षी भेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश परम रूपे नमो जोग जे जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते नमो नित नारायणे नमो क्रूर नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवस्तरमे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नम संग सनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्व प्रणासी अनुपे रूपे समस्वल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बिरुद्धकर्ता अदो ऊर्ध अर्धंग अगंग ओघहर्ता परंग परंग परमेश्वर प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशेदी अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्त तामंग तेरा जूर चाचरी शांद जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है अदेश है पेश है पुजंग प्रयाद शब्द अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमास्तवंग निर्नाथे नमास्तवंग परमाथे नमास्तवंग अगंजे नमास्तवंग अपंजे नमास्तवंग अगाले नमास्तवंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्पेशे नमो राज राजे नमो साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वंगे नमो सर्वज्ञाने मरम नमो नमो सर्वज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृष्ण नमो सर्वरंगे तरभंगी अनंगे नमो जीव जीविंग नमो बीज बीजे अगजे बीजे समसंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी चरबड़ शांद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल सर्वंग अल्लाह कर्मंग सर्वंग अलख कर्म अलख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग पुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेम सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वान्तरमान देव अभेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराज अवधूत रूप साल नाम ठामना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और न पे जाकर रूप रेखना राग जतर ततर दिशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख ताम हु न जाहे सर्वमान सर्वतर्मान सदय मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन की।

चाकर जन मरण विहीन चाकर बकर फिरे चतुर चुक मानी पुरथीन लोक चौदह के बिखे जग जाप हिंजे जाप आदे बनाद मूर्था प्यो सब जे थाप परम परम रूप परम रूपनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरखा देश धर्म धाम सो परम रहता भूत लख अभेस अंगरागना रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वंजन आद्रुप असूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व प्रतपार सर्वगंता सर्वंता सर्वदेन भेख सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत भागत नेत कोड सीमृत पुराण शास्त्र न आवहि बहुचित मद भार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंकुमा अनंग अनुभव प्रकाश निसन अनास आजान बाहो शाहान शाहो राजान राजपान अनुभान देवान देव महान इंद्रा

अपने रचियो नाओ दोए कुदरे साजे कर आसन डिठो चाओ दाता करता पुस्ते वै करे पसाओ तू जाना सबसे दिल ऐसे जिन कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ।

कूड़ा लाल छिटे मलकते आई है फालती विभु पाई है जिवे ही घर कमाई है जे होवे पुरब लिखिया तो धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है।

दयाल कृपा करिता साई घर कराए सी सो सेव सेवा कर जिसनु खुम बनाए सी हुक्म मन हो प्रमाण तक कसमे कमेल पाए सी कसमे पावे सो कर मन चंदे सो।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे विड़भागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दे चरणा नाल जुड़ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो सतगुरां ने अमृत वेले पावन हुक्मनामा बख्शिया उसदी विचार आपां कर सकीए।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवे ताहे सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पात साहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी।

दास दीजै जस गावो निस अरपोर केस संग दास पग चारो एह मनोरथ मोर ठाकर तुझ बिन बिया न होर चितवो हर रसन अराधो निरखो तुमरी ओर राहो दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर नाम जपै नानक दास तुम रो उदरस आखी फोर गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए सा संगत को जय न साकै मल मल तो वै पाए अब मोहे आए पर ओ शरणाए गोहज पाव को बहुत पर जा रै मोह को सदगुरु दियो है बताए राव सिद साध कियर जाख किन्नर नर रही कंठ हृदय जन नानक अंग किया प्रभ करता है जाके कोट ऐसी दासाए गुजरी महला पंजवा आप जस मिट होवे जग कीरत दरगाह बैसन पाईए जम की त्रास नास होए खिन में सुख आनंद सेती कर जाइए जानते काल न बिरथी जाइए आठ पैर सिमरो प्रभ अपना मन तन सदा त्याइए राव मोहे शरण दीन दुख भंजन तू देह सोई प्रभ पाइए चरण कमल नानक रंग राते हर दास पैज रखाइए गुजरी महला पंजवा बिस्वंबर जीवन को दाता भंडार परे भगत परे भंडार जाकी सेवा ने फल ना होवत खिन में करे उदार मन मेरे चरण कमल संग राच सगल जी जाको आराध है ताहू को तू जाच रहो नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रप्राण आधार होए सहाय जिस तू राखें तिस कहाँ करे संसार गुजरी महला पंजवा जन की प्याज सुवारी आप हर हर नाम दियो गुरु औखद उतर गयो सब ताप रहो हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार मिटी ब्याद सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करता है गुरु पूरे की वडियाई अब चल नीम तरी गुरु नानक नित नित चढ़ाए सवाई गुजरी महला पंजवा कबू हर सौ चीत ना लायो धंधा करत बिहानी अवदाय गुण निध नाम ना गायो राव कौडी कौडे जोर कवटाए अनेक जुगत करता आयो बिसरत प्रभ कित दुख गनिय महा मोह निखायो करो अनुग्रह स्वामी मेरे गुनो न मोह कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुसागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या भज सदा भगवंत रहो नाम एक आधार भगता ईत आगे टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध भवेक करण कर समरथ श्री धर शरण तंकी गही मुक्त जुगत रवाल साधु नानक हर निध लही गुजरी महला पंजवा कर चौथा चौप दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरो प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराध सर्व सु कल्याण पाप है मिटे सगल उपाद राव मात पिता सूत मीत भाई तिस बिना नहीं कोई ई तूत जी नाल संगे सर्व रव्या सोए कोट जतन पाव मिथ्या कछु न आवै काम शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कै नाम अगम दयाल प्रभु ऊचा शरण साधु जोग
ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦ ਹੀ ਰਮੋ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਸ ਸਾਸ ਅਰਾਧ ਹਰ ਹਰ ਲੈ ਜਾਏ ਮਨ ਕੇ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪਾਵ ਹੈ ਮਿਲੀ ਨਿਰਮਲ ਥਾਉ ਰਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਇਹੋ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਬਿਨਸੈ ਮਿਟੈ ਸਗਲ ਉਪਾਦ ਅਟਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਵਾਮੀ ਸਰਣ ਤਾਂ ਕੀ ਆਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧ ਹਿਰਦੈ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਬਖਸਲੀ ਨੈ ਆਪ ਸਰਬ ਸੁਕਰ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਗਈ ਸੰਕਾ ਤੂਟ ਦੁਖ ਨਿਰਾ ਪੈ ਬਨਾਸੇ ਪਾਪ ਗਏ ਨੇ ਖੋਟ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲ ਸਾਧ ਬਚਨ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਏ ਮਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਾਉ ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸਫਲ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਰਾਖੇ ਭੈ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨ ਬਿਸਰ ਕਬ ਹੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਗੁਣ ਅਨਿਕ ਰਸਨਾ ਕਿਆ ਬਖਾਨੇ ਅਗੰਤ ਸਦਾ ਅਕਥ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਤਾਰਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਟਲ ਪਦਵੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਸਰਣ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਓ ਬਿੰਦ ਬਹੁ ਸਗਨ ਮਾਇਆ ਮਹਾਂਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੀਨੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ ਮਨ ਤਨ ਬਾਛੀਐ ਜਨ ਧੂਰ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਲਹਿ ਪਾਤਕ ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਰਾਉ ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਧ ਆਸਾ ਕੂਕਰੀ ਬਿਕਰਾਲ ਗੁਰ ਨਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੀਰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣ ਕਾਟਿਆ ਜਮਜਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਮੂਠੇ ਸਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿਮਰਨ ਮਿਟਤ ਜੋ ਨੀ ਭਵਨ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸੁਰ ਸ੍ਰਿਧ ਤੀਨ ਤਾਪ ਜਲੰਤ ਜਪ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਸਰਬ ਵਿਦ ਪਰਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰੇ ਕਤੇ ਨਾਹੀ ਛੋਟ ਹਰ ਸਰਣ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਣ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਾਧ ਸ੍ਰੀ ਤਰ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ ਗੁਣ ਰਮਣ ਸਰਵਣ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਤ ਬਿਯੋਗ ਮਨ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦੂ ਪਾਸ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੰਤ ਸਿਮਰਨ ਕਾਟ ਜਮਨ ਦੂਤ ਫਾਸ ਰਾਉ ਸਤਰ ਦਹਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹਿਨ ਅਵਰ ਕਛੂ ਨਾਉ ਪਾਉ ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਆਉ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਖ ਰਾਏ ਜਾਹੇ ਕਲੇ ਸੁਮਿਟੈ ਭੈ ਭਰਮਾ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਜ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਠਾਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਜਪੇ ਤੁਮਾਰਾ ਨਾਉ ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਲਗੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਵਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗੇ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਿਮਰੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਆਪ ਤਰੈ ਸੰਗਤ ਸਭ ਉਧਰੈ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲਾ ਚਰਨ ਅਧਾਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਸਰਣ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ਹਰ ਹਾਥ ਗੁਜਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਨਗਰੀ ਪੰਚ ਚੋਰ ਬਸੀਅਲ ਬਰਜ ਤੋਰੀ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰੈ ਦਸ
माल रखे जो नानक मोख मुकत सो पावे चेतो वासुदेव बनवाली राम हृदय जप माली राव उर्द मूल जिस साख तला तुलाहा उर्द मूल जिस साख तलाहा चार बेत जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लेव जागे पार जात करे आंगन मेरा पोप पतर तत डाला सर्वजोत निरंजन संभु छोड़ो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिन में छोड़ो माया जाला मन विचार एक लिव लागे पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथी अले सो वैद जे जाने रोगी तिस कारण काम ना तंदा ना ही तंदे गृही जोगी काम क्रोध अहंकार तजी अले लो मोह तिस माया मन ताते अवगत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथी अले सेत वर्ण सब दूता ब्रह्म कमल मद तास रसादंग जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु गम पुनः न घर पंग बिकता जे अमृत पे आया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंत न परें सुमार जैसी भूख होए अभ्यंतर तू समरथ सचदेव नहार ऐ जी जप तब संयम सच आधार हर हर नाम देहे सुख पाइये तेरी भगत परे पंडार रहो सुन समाद रह लिव लागे एकाएक शब्द विचार जल थल तरण गगन तै नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मगर ना छाया ना सूरज चंद ना ज्योति अपार सर्व दृष्ट लोचन अभ्यंतर एका नजर सूत्र अनुसार पावन पानी अग्न तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश आकार सर्वे जाचक तू प्रभदाता दात करे अपना विचार कोट तेतीस जाचे प्रभु नायक दें दे टूट नाही भंडार उंदे भांडे कछ ना समावे सिद्ध अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाचे रिद्ध सिद्ध जाच करें जयकार जैसी प्यास होए मन अंतर तैसो जल देव है प्रकार बड़े भाग गुरु सेव है अपना भेद नाही गुरु दे मुरार तांको काल नाही जम जो है बुझ है अंतर शब्द विचार अब तब अवर न मांगो हर पै नाम निरंजन दी जय प्यार नानक चात्रक अमृत जल मांगे हर जस दी जय कृपा तार गुजरी महला पहला ऐ जी जन्म मरे आवे फुन जावे बिन गुरगत नहीं काई गुरमुख प्राणी नामे राते नामे गत पत पाई पाई रे राम नाम चित लाई गुर प्रसादी हर प्रभु जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ ऐ जी बहुते पेख करें पेखे आको केते उदर परन कहताई बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ न जाई ऐ जी काल सदा सिर ऊपर ठाडे जन्म जन्म वैराई सच सबद रते से बचे सदगुरु बुझ बजाई गुरु सरण आई जो न सके दूत ना सके संताई अवगत नाथ निरंजन राते निरपो सो लिव लाई ऐ जियो नाम जुड़ो नाम लिव लाभो सतगुरु टेक टिकाई जो तस पावे सोई करसी किरत ना मिटिया जाई ऐ जी भाग परे गुरु सरण तुम्हारी मैं अवर न दूजी पाई अब तब एको एक पकारो आद जुगाद सखाई ऐ जी रखो पैज नाम अपने के तुझे स्यों बाने आई
कर कृपा गुरु दर्श दिखावो होमे शब्द जलाई ऐ जी क्या मांगो किछ रहे न दिसई इस जग में आया जाई नानक नाम पदार्थ दिजाय हृदय कंठ बनाई गुजरी महला पहला ऐ जी न हम उत्तम नीच न मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रचे केवल वैरागे सोग विजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सदगुरु वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान न जम की बाकी रहाउ हर गुण रसन रवे प्रभ संग ज्योत पावे सहज हरी बिन हर नाम व्यर्था जग जीवन हर बिन नेफल मेक करी ऐजी खोटे ठौर नाही कर बाहर निंदक नहीं काई रोस करै प्रभक्ष न मिट नित नित चढ़ाय सुवाई ऐजी गुरु की दाथ न मिट कोई मेरे ठाकुर आप दिवाई निंदक नर काले मुख निंदा जन गुरु की दात न पाई ऐजी शरण पर प्रभु भक्स मिलावे बिलम न अदुआराई आनंद मूल नाथ शरणाथा सदगुरु मेल मिलाई ऐजी सदा दयाल दया कर रविया गुरमत परमन चुकाई पारस पेठ कंचन तात होई सत्संगत की वड्याई हर जल निर्मल मन सुनाने मजन सदगुरु पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति ज्योत मिलाई तू वड़ पुरख अगमत रोबर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दि जय जोग जोग शब्द सलाही गुजरी महला पहला कर चौथा एक ओंकार सदगुरु प्रसाद भगत प्रेम आराध तंग सज प्यास परम तंग बिला बिल बिनंतिया सुख पाए चित हितंग जप मन नाम हर सरणी संसार सागर तार तारण राम नाम कर करणी रहाओ ए मन मृत सुभ चितंग गुर शब्द हर रमणंग मत तत् ज्ञान गो कल्याण निदान गो हर नाम मन रमणंग चल चित वित परमा परमंग जग मोह मगन हितंग थिर नाम भगत दृढ़ंग मति गुरवाक सौद रतंग परमात परम न चुकै जग जन्म ब्याद खपंग अस्थान हरने के बलंग सत मति नाम तपंग एहो जग मोहित व्याप्तंग दुख अधिक जन्म मरणंग पज शरण सतगुर उबरै हर नाम रिद रमणंग गुरमत ने चल मन मन मनंग सहज विचारंग सो मन निर्मल चित साच अंतर ज्ञान रतन सारंग पै पाए भगत तर पौजल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तव सरणी लभ लोभ लहर निवारणंग हर नाम रास मानंग मन मार तुहि निरंजना कहो नानका शरणंग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद निरत करी एहो मन नाचाई गुर प्रसाद आप गवाई चित थिर रखे सो मुक्त होवे जो इच्छे सोई फल पाई नाच रे मन गुर के आगे गुर के पाने नाचे ता सुख पावे अंत जम पाओ भाग रहो आप नचाए सो भगत कहिए अपना प्यार आपे लाए आपे गावे आप सुनावे इस मन अंधे को मार्ग पाए अंधन नाचे सकत निवारे शिवकर नींद न होई शक्ति कर जगत सूता नाचे टापे अबरो गावे मन मुख भगत न होई सुरनर वृत पख कर्मी नाचे मन जन ज्ञान बिचारी सिद्ध साधक लिव लागे नाचे जन गुरमुख बुद्ध बिचारी खंड ब्रह्मंड त्रैगुण नाचे जन लागे हर लिव तुम्हारी
जी जंत सब ही नाचय नाचय खानी चारी जो तुत पावै से ही नाचय इंजन गुरमुख शब्द लिवलाय से भगत से तत् ज्ञानी जिन को हुकम मनाए ऐहा भगत जो सचे सिउ लिवला गए बिन सेवा भगत ना होई जीवत मरे ता शब्द विचारे ता सच पावै कोई माया के अर्ध बहुत लोग ना चाहे को बरलाता तो बिचारी गुर प्रसादे सोई जन पाए जन को कृपा तुम्हारी एकदम साचा विसरै सावे ला बिरथा जाए सा साए सदा संभाली आपे बगसे करे रजाए से ही नाचे जो तो पावे जय गुरु शब्द विचारी कौ नानक सह सुख पावे जिनको नजर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर बिन जियरा रह न सके जो बालक की रियाधारी अगम गोचर प्रभ गुरुमुख पाई अपने सतगुरु के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरुमुख नाम अमृत जल पाइये जिनको कृपा तुम्हारी रहो सनक सनंदन नारद मन सेवै हंदन जबत रहे बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आए तिनके पै सवारी अलख निरंजन एको वरतै एका ज्योत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मंग हाथ पसारी भगत जना की उत्तम बाणी गाव्या कथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिनके राया पे करे कुल आप तर कुल तारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्याप जन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा न पावे ओए डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओहो मल पाख मायाचारी संत जना के निंदा व्यापे नार न पारी ए प्रपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हरे को सूत वत जग अंतर सूत किंचाई कंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिनवन ना मांगो हर रस प्रीत प्यारी गुजरी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राजन में तू राजा कही है भूमन में भूमा ठकुराई ठाकुर में ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा पिता मेरो बड़ो तनिया गम्मा उतत कवन करी जय करते पेख रहे बिस्मा रहो सुखियन में सुखिया तो कही है दातन सिर दाता तेजन में तेजवंशी कही है रसियन में राता सूरन में सूरा तो कही है भोगन में भोगी ग्रस्तन में तू बड़ो ग्रस्ती जोगन में जोगी कर्तन में तू करता कही है आचारण में आचारी साहन में तू साचा साह व्यापारन में व्यापारी दरबारन में तेरो दरबारा शरण पालन टीका लक्ष्मी के तक गणि न जाइये गण न सको सीका नामन में तेरो प्रभ नामा ज्ञानन में ज्ञानी जुगतन में तेरी प्रभ जुगता स्नानन में स्नानी सिद्धन में तेरी प्रभ सिद्धा कर्मन सिर कर्मा आज्ञा में तेरी प्रभ आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा ज्यों बुलाव है त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी गुजरी महला पंजमा घर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नाथ नरहर दीन बंधव पतत पावन देव पैदरास नाथ कृपाल गुण निध सफल स्वामी सेव हर

ना उपत होई। ज्योत पावै तिवै करै तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसै शब्द कमाए, ओ अवाणी कदे नाहे ना आवै ना जाए। सदा सदा सो सेविय जो सामे रह समाए, अवर दूजा क्यों सेविय जम्मे ते मर जाए। ने पलतन का जीविया जे कसम ना जाने, अपना अवरी को चेत लाए। नानक एव नाम जापै करता केति दै सजाए। महला तीजा सच्चा नाम चाहिए सबो वरचै सच। नानक हुकम भुज परवान होए ता पर पावै सच। कथनी बदनी करता फिर हुकम मूल, न बुझै अंधा कच निकच। पौड़ी संजोग वजोग पायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्म सिष्ट साधियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योतियों सब चानना सगुर शब्द सुनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा गुण सरतंद लाया, माया का मूल रचाय अंतरिया सुख पाया। स्वलोक महला तीजा सो जाप सो ताप जय सदगुरु पावै। सतगुर कै पाणे वडियाई पावै, नानक आप छोड़ गुरु माहि समावै। महला तीजा गुर की सिख को बिरला लेवै, नानी जिस आप वडियाई देवै। पौड़ी माया मुआ ज्ञान है बिखम अत भारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिया तारी। अंदर भगति रत्या हर पारी ओ तारी, गुर सब दी मन निर्मला हो मैं छड़ बेकारी। हर हर नाम च आइये हर हर निस तारी। श्लोक कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए, मन तो मैं गलोय रान निक्षा क्यों कर जाए। ऐसा सदगुरु जे मिलाए तो ठाकरे पसाओ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा नानक मुक्त द्वारा यत नीका, नाना होय सो होय। होमे मन असूल है क्यों कर विच दय जाए। सदगुरु मिलिया होमे गई जोत रही सब आए। एहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़े प्रभु संसार उपाय के बस अपने किता, गणताए प्रभु ना पाइए दूजे परमिता। सदगुरु मिलिया जीवत मरे बुझ सच समिता। शब्द हो मैं खोइए हर मेल मलिता, सब जाने करे आप आपे वेग सीता। श्लोक महला तीजा सतगुर स्यों चेतना लायो, नाम न बस्यो मन आए। त्रिग वेहा जीविया क्या जोग में पाया आए। माया खोटी रास है कचसै मैं पाज लह जाए। हथों छुड़के तन स्याओ होए, बजन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यों चित लाया तन सुख वस्या मन आए। हर नाम च आवै रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो धन सप्या जे जी मेर समाए। रंग तिसे को अगला वन्नी चढ़ाए चढ़ाए। महला तीजा माया होई नागनी जगत रही लपटाए। इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। गुरमुख कोई गारड़ू तन मल दल लाई पाए। नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीर को होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवे खसम दयाल तम मैल कर पाए सी। सो प्रभु मेरा अत वड्डा गुरमुख में लाए सी। श्लोक महला तीजा सबना का सौ एक है सद ही रहे हजूर। नानक हुकम ना नानक हुकम ना मनै ता कर ही अंदर दूर। हुकम बितना मनाए सी जिनको नदर करे, हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहागण हो।

0: वाह वाह कर्मे पाइए आप दया कर दे नानक वाह वाह गुरमुख पाइए अंदर नाम लाए महला तीजा बिन सतगुरु सेवे साथ न आवे दूजे नाही जाए देव तेरा लोचिए बिन करमाए न पाया जाए जिन्ना अंतर लो विकार है दूजे पाए खुआए जमण मर न चुके हमें विच दुख पाए जिन्ना सतगुरु सिंह लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना होवे ना हो दुख साए नानक गुरमुख बर सच्चे शब्द समाए
1: सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पालें आ किरत कणा पूरन दृष्ट तेरी राम सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोरा मोर मन मान

माधो एहो जन्म तुम्हारे लिखे कहे रविदास आस लग जीव चिर पयो दर्शन दिखे कहे रविदास आस लग जीव चिर पयो दर्शन दिखे कहे रविदास आस लग जीव चिर पयो दर्शन दिख वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ। रामकली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्द तां गावु हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले पर नाल रहो तू मन मेरा दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्लां सुमरथ स्वामी सो क्यों मनो वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है घर तां तेरा है सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा दारू साच नाम उदार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस

करै सो भला मुनाइया। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर पीजै, इयो दर्शन हर जियो पाइया।

तीर ज पाया प्राव अविनाशी बस्या घट पितर हर मंगल नानक गावे जियो माज महला पंजमा पार ब्रह्म परम देवा आगम अगुच लख पेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो गुरमत गाति जियो गुरमुख मसूदन तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाये और तकित न पाती जियो नरहारी केसर निर्भरा कोट ना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई पत काती जियो अमोक दर्शन अभयंत पारा वड समरथ सदा दतारा गुरमुख ना जपे तत त्रिये गत नानक विली जाते जियो माज महला पंजमा कहया करना दिता लैना गरीबा नाथा तेरा माना सबके तू है तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो भाने उजड़ भाने रहा भाने हर गुण गुरमुख गोवाह भाने परम पाए बहु जूनी साब किश तिसे रजाई जियो ना को मूर्ख ना को स्याना बरते सबके तेरा पाना अगम गोचर बेंत अथाह तेरी कीमत कह न जाई जियो खाक संतन की दे प्यारे आए प्यार तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन अगावे नानक मिल सुभाई जियो माज महला पंजमा दुख तदे न विस जाए भुख व्यापे बहु बिद धावे सिमरत नाम सदा सोहेला जस देवे दीन दयाला जियो सतगु मेरा वड समरथ जीव संभाली ता सब दुख लता चिंता रोग गई हो पीड़ा आप करे प्रतपाला जियो बारख मांग हो साब किश मंगा दे दे तोट नाही प्रभ रंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जियो हो बलिहारी सतगुर पूरे जन बंधन काटे सगले मेरे हिरदे नाम दे निर्मल किए नानक रंग रुसाला जियो माज महला पंजमा लाल गोपाल दया रंगीले गैर गंभीर बेहंत गोविंदे ऊच था बेहंत स्वामी सिमर सिमर हो जीवा जियो दुख भंजन ने दाना मोले निरपो निर्वैर अथा अतोले काल मूर्त अजुनी सबो मन सिमरत डंडा थी बाजियो सदा संगी रंग पाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसैन मन तृप्तायन गुरमुख अमृत पी बाजियो दुख सुख प्यारे तो ते आई ए सुमहत गुरु ते पाई नानक की तर नानक की ता तू है ठाकर हर रंग पार परी बाजीवो माज महला पंजमा तन सुवेला जित मैं सतगुर मिलया सब दर्शन नेत्र पिखत तरिया तन मूर्त चसे पल करिए तन सु होए सो जोगा जियो उदम करत मन निर्मल होवा हर मार्ग चलत भरम सगला खोया नाम निधान सतगुरु सो नाया मिट गए सगले रोगा जियो अंतर बार तेरी बाणी तो आप कथित आप बखानी गुर कहया सब एको एको अवर ना कोई होगा जीगो होगा जियो अमृत रस हर गुर ते पिया हर पन नाम भोजन दिया नाम रंग नाम चोच तमासे नौ नानक किने भोगा जियो माज महला पंजमा सकल संतन पै बस्त एक मांगो करो भिनती मान त्यागो वार वार जाई लख वरिया देह संतन की तुहरा जियो तुम दाते तुम पुरख बदाते तुम सम्राट सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन तेरे महापवन पनिता आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता तुम दाते तुम पुरख बदाते तुत जेबड़े अवरना सूरा जियो रेन संतन की मेरे मुख लागी धर्मत बिनसी को बुद्ध अभागी सच कार बैस रहे गुण गाए नानक बिनसे कूरा जियो माज महला पंजमा विसर नाही ए वरदाते कर कृपा पंक्त संगराते जिस रह जियो जिस रह स्यो तुद त्याई दे ए दान मोह करना जियो
ਮਟ ਅੰਧੀ ਸੁਤ ਸਮਾਏ ਸਭ ਕੈ ਦੀਆ ਪਰਿਆ ਜਾਏ ਨੰਦ ਮਨੋ ਚੋਤ ਮਾਸੇ ਤੁਤ ਭਾਵੇ ਸੋ ਹੋਣਾ ਜੀਓ ਸਾਭ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਭ ਕਿਛ ਲੈਣਾ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸੇ ਸੁਹਾਲੀ ਸੀਤਲ ਪਵਨਾ ਸਹਿਜ ਕੇਲ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀਓ ਸਾ ਬੁੱਧ ਦੀਜੇ ਜਿਤ ਵਿਸੇ ਨਾਹੀ ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੇ ਜਿਤ ਤੁਦ ਤੇ ਆਈ ਸਾਸ ਸਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚੰਨਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਨ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਸੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜੋ ਤੁਦ ਪਾਈ ਸੋਈ ਜਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਜੀ ਪਾਣੇ ਪੂਰ ਗਿਆਨਾ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੇ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਮਾਨਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ ਸੰਤ ਖੇਲੇ ਤੁਮ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਤੁਧ ਖਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀਓ ਉਹ ਸੰਤਨ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜੰਤੂ ਜਾਤਾ ਜੋ ਤੁਧ ਮਨ ਪਾਨੇ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰਸ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਨਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੂੰ ਜਲ ਨਿਦ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂੰਦ ਹਮ ਚਾਤਕ ਤਿਖਾਰੇ ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਤੁਮੀ ਸੰਗ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜੀਓ ਜਿਉ ਬਾਰਕ ਪੀ ਖੀਰ ਅੰਗਾਵੇ ਜਿਉ ਨਿਰਧਨ ਧਨ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜਹਲ ਪੀਪਤ ਠੰਡਾ ਤਿਉ ਹਰ ਸੰਗ ਇਓ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜੀਓ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰੇ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸਾ ਭਰਤਾ ਚਿਤ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਉ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਤਿਉ ਹਾਰ ਰੰਗ ਮਨ ਰੰਗੀਨਾ ਜੀਓ ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਸੰਗ ਗਜਾਇਆ ਹਾਰ ਹਮਰਾ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦੀਨਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਿਆ ਸੁਖਦਾਈ ਦੁੱਖ ਵਿਡਾਰਨ ਹਰੀਆ ਅਵਰ ਸਾਧ ਚੱਖ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਸਭ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀਓ ਜੋ ਜੋ ਪੀਏ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਅਮਰ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾਵੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜੀਓ ਜਿਸ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਨਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸਾਧ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਹਿ ਭੋਲਾਨਾ ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਬਗਿਠਾ ਜੀਓ ਹਰ ਇਕਸ ਹੱਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਵੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿਸ ਲਗ ਮੁਕਤ ਭਾਇ ਕਨੇਰੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਵਿਲੇ ਟਿਠਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿਰਧ ਸਿਧ ਰਿਧ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਗਹਿਰ ਗਭੀਰੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਮਾਰਾਵੇ ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ਜੀਓ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਗਤ ਭੈ ਪਨੀਤਾ ਸਗਲ ਉਦਾਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ਅਗਮ ਗੁਚ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਤਿਆਈ ਜੀਓ ਜਾ ਕੋ ਖੋਜੋ ਸਰਬ ਓ ਪਾਏ ਬੜਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਵਿਲਾ ਪਾਏ ਊਚ ਪਾਰ ਗੁਚ ਤਨਾ ਓ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਦੇਖਾਈ ਜੀਓ ਗੈਰ ਗਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਸੇਰਾ ਗੁਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਤਿਆਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਭਤ ਜਾਤ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਸਗਲ ਵਰਤ ਹੰਦਾ ਜੀਓ ਨਾਮ ਅਖਤ ਮੋਕੋ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ਕਿਲਵੈ ਕਾਟੇ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਨਿਕਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ ਸਗਲ ਬਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜੀਓ ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਗ ਸੰਸਾਰਾ ਸਤ ਕਰੇ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਕਾਹੇ ਕਹੋ ਡਰਦਾ ਜੀਓ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪਾਏ ਗੁਰ ਭੇਟ ਤਹੁ ਗਹੀ ਬੁਲਾਏ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਠਾਕ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਓਤ ਪੋਤ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਰਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾਂ ਪੀਸੋ ਸੇਵਕੇ ਠਾਕਰ ਹੀ ਕਾ ਆਹਰ ਜੀਓ ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ
का सेवक मन पाया। सोई कमावे जो साहेब पावे सेवक अंतर बाहर महर जियो तू दाना ठाकर साबित जाने। ठाकर के सेवक हर रंग माने जो कुछ ठाकर का सो सेवका सेवक ठाकर ही संग बाहर जियो। अपने ठाकर सो अपने ठाकर जो पहराया बहुन लेखा पुछ बुलाया ते सेवक नानक कुर्बानी सो गहर गबीरा गोहर जियो। माज महला पंजमा साब कुछ करमे बार नाही बाहर टोले सो परम पुलाही गुर प्रसादे जिने अंतर पाया सो अंतर बाहर सहेला जियो। चेम चेम वरसे अमर तारा मन पीवे सुन शब्द बेचारा नंद मनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो। जन्म जन्म का बिछड़ा मिलया सत कृपा ते सुखा हरिया सुमत पाए नाम त्याए गुरमुख होए महला जियो। जल तरंग ज्यो जल समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया कौ नानक परम कटे कुवाड़ा बार न होये जौला जियो। माज महला पंजमा तिस गुरबाणी जन तू सुनिया तिस बलिहारी जन रसना पढ़िया वार वार जाए तिस बिटो जो मन तन तुद अरादे जियो। ते चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दे आले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मिल सो प्रभ लादे जियो। सो सेवड़ भग जन तुम जाने सबके मधे अल्पत निर्बाण साधके संग उन पौजल तरिया सगल दूत साध जियो। तिन ही तिन की सरन प्रया मन मेरा मान तान तज मो अंधेरा नाम दान दीज नानक तिस प्रभ अगम अगादे जियो। माज महला पंजमा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सुख महोआ अस्थूली तू जल निद तू फेन बुदबदा तुद बिन अवर ना पालिए जियो। तू सूत मनिए पी तू ही तू गठी मेर से तू है आदम अद अंत प्रभ सोई अवर न कोई दे खालिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्बाण रसिया रंग राता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकर सेवक फण आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक भोरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजमा सफ सुबाणी जत नाम बखानी गुर प्रसाकन बिले जानी धन सुवेला जत हर गाव तसन्ना आए ते परमन्ना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा से कर पुले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हो बल तिन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग बिन महे उदारे किल बिख काठ हुआ मन निर्मल मिट गया मन जाना जियो। दोहे का जोड़ एक करो दोहे का जोड़ एक बिना करीजे कर कृपा डुबदा पत्थर लीजे नानक प्रभ पाए कृपाला प्रभ नानक मान पहना जियो। माज महला पंजमा अमृत बाणी हरा तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनवा सतगुर का दर्शन पाए जियो। सुख पाया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे साफ सुबर बिरथा कोय न जाए जियो। दया धारी तन से जन हारे जी जंस सगले पित पारे मेहरबान कृपाल दयाला सगले तृप्त अगाए जियो। वन त्रहन त्रिपन की तोन हरिया करन हार खिन पित करया गुरमुख नानक तसे राधे मन की आस पजाए जियो। माज महला पंजमा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधु तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबने थाई ता भाव कहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओर तू है मेरा माना
तुस बैं दूजा अवर न कोई सब तेरा खेला खड़ा जियो जी जसा तुर पाए जित जित पाना तित तित लाए सब किस तेरा सब किस कीता तेरा होवे नाही किस असाड़ा जियो नाम त्याए मां सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया गुरपुरे वजी बधाही नानक जिता बेखड़ हजियो माज महला पंजमा जी प्राण प्रभ मने आधारा भगत जीवे गुण आए अपारा गुण दान अमतरा नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे सा संग जन मरन मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे भेट गुर दर्साया जियो अगम गुच किश मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावे ग्यानी खुदी मिट्टी चूका फूलावा मन गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम बखाना ओए कृपा स्वामी अपा नौ नानक हक हर मैं आया जियो माज महला पंजमा सो सो जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकर।

जंत सर्व कला प्रपूर्ण मज निवाणी थाहम ओट गही ओ हर ओट गही मन अंदर है जब जब जीवा नाम कर कृपा परवापणी जन धूड़ी संग समाओ ज्यो तू राख तौर हां तिर दिता पहना खाओ उत्तम सोई करे प्रभ मेर साधु गुण गाओ दूजी जाए न सोचाई किथे को कुण जाओ अज्ञान बनासरण तम हरण ऊचो आगम माओ मन विछड़िया हर मेलिए नानके समाओ सर्व कल्याण तित दिन हर पैसी गुर कह पाओ बार माज की तथा श्लोक महला पहला मालक मरी तथा चंद्र चंद्रहाड़ा सोइया की धुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुर गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर हिवै हर गुर दीपक तै लोए अमर पदार्थ नानका मन मानिए सुखोए महला पहला पहले प्यार लगा थान दुध दूजे माया बाप की सुध तीजा पहा बापी भेव चौथे प्यार पन्नी खेड पंजवे खान पीन की तात छेवे काम न पुछे जात सतवे सहज किया करवास अठवे क्रोध हुआ तन ना

तुद पावे नाय रचावे तुद पाणे तू पावे नानक एक कहे बेनंती होर सगले कूड़ कमावे। महला पहला जा तू वड्डा सब वड्याईया चंगे चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई न कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मे बिच रखे नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेवन संग परम चुकाई है सतगुर अखे का आखे कार सुकार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है लाहा भगत संसार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गवार कूड़ कमाई है सच्चे दे दर जाए सच चंबाई है सच्चे अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सचियार सच समाई है। श्लोक महला पहला। कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमा बस सच चंद्रमा

कमाई है, बिन सच्चे गुड़ियार बन चलाई है, बिन सच्चे तन छार छार रलाई है, बिन सच्चे सब दुख सब भुख जे पैजे पा खाई है, बिन सच्चे दरबार कूड़ न पाई है, कूड़े लालच लग महल खुआई है, सब जग ठगियो ठग आईये जाइये, तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइये। श्लोक महला पहला। नानक गुर संतोख रख धर्म फुल फल ज्ञान, रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान, पात के साध खादा लह दाना कै सिरदान। महला पहला।

दान होते इस नान हो वंज पास पई सिर खुत है पानी बिचो रतनो पन्ने मेर किया मा धानी अड़सठ तीर्थ देवी थापे पुर भी लगे बाणी नायन बाजा नाते पूजा नावन सदा सुजानी मोया जीव दया गत होवे जा सिर पाई है पानी नानक सिर खुत है सैतानी इना गल ना पानी उठे होए बिलावल जी जुगत समाणी उठे अन कमाद कपाहा सबसे पड़दा होवे उठे कर चरह नित सुरही सा धन दही बिलोवे तित के होम जग सद पूजा पइये कारज सोहे गुरु समुंदन दी सिखन सब सिखी नात जित बड़ियाई नानक जे सिर खुत है नावन नाही ता सत चटे सिर छाई महला पह दूजा अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात चंद अनेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस बिच सब कुछ होए नानक का पत पाईए जा पद रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुबहान सदा कलाणिया तू सच्चा दीवान होर आवन जानिया सच जे मंगे दान से तू दे जेहया सच तेरा फुरमान सब दे सोहया मन्या ज्ञान ध्यान तू देते पाया कर्म होवे निशान चले चलाया तू सच्चा दा तार नित देवे छड़े सवाया नानक मंगे दान जो तुद पाया श्लोक महला दूजा दिखिया आख बुझाया सिफती सच समेयो तिनको किया उपदेसियन जिन गुरु नानक देओ महला पहला आप बुझाए सोई बुझे जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझै कह कह कथना माया लूझै हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने शब्द विचार अखर नौ अखियो आप लह परात होवे जिस

सच्ची सिफत सलाहा कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन आया गुरमती खदा खादा राज तेन सुख पाया ढाडी करे पसाओ।

बिन कोई न लंघ सपार, पै पौ रखे राख्या पाए सवार रहाओ, पै तन अगन पख पै नाल, पै पौ घड़िए शब्द सवार, पै बिन काड़त कच निकच, अंधा सच्चा।

दिस तावे कर्म लिख्यास नाम सजोगी गोयल थाट काम क्रोध फुटे मिख पिख माट बिन वखर सुनो कर हाट गुर मिल खोले बजर कपाट साधु मिले पुरब संजोग सच रहसे पूरे हर लोग मन तन दे लै सहज सुबाए नानक तिनके लागो पाए गौड़ी महला पंजवा काम क्रोध माया मह ची झूठ विकार लागे हित चीत पूंजी लाल पाप लोभ की कीत तर तारी मन नाम सुचीत वाहो वाहो साचे मैं तेरी

नाही तुद भक्त भंडार किया गर बनावे रास जियो पिंड सब तेरा पास तू मार जवाले खसम मिलाए ज्यो पावी त्यो नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरा गुरमत दे भरोसा तेरा तन मह मैल नाही मन राता गुरबचनी सच सच सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की बड़े आई नानक रहना भक्त सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अपियो पाया अपियो पियाया अन पै विसरे नाम समाया।

पदार्थ भगत हर पाया जाके हृदय वस्या हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा महन रास बुझाया दीनानाथ सर्ब सुख दाता नानक हर चारणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रहे सुखाली बाजी इह संसारो लब लोभ मुच मूह कूड़ कमाव है बहुत अठाव है पारो तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों धरो परछारो सुन सुन सिख हमारी सुकिरत कीता रहसी मेरे जीअड़े बहुड़न आवे बारी रहाओ हाँ तू दाखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करह पराई झूठी।

गौड़ी चेती महला पहला मुद्रा ते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंथाता पंच चेले बस की जय रावल एह मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पाविस्ता एक बा एक शब्द दूजा होर नासित कंध मूल मन लाविसता रहाओ मुड़ मड़ाई जे गुर पाई हम गुर कीनी गंगाता तिर पवन।

अंत न चाहे अजाए अंत को चाहन जो गए सो आए अंत गवाए अपन लिया जे मिले ता सबको पाखट होए कर्मा उपर निबड़े जे लोचे सब कोए नानक करना जिन किया सोई कार करे हुक्म न जा

सहज सुभाए मेरा सह मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार, और वार मेरा सह बसै हौ मिल।

सच सोए। सच बसे साची सबकार, उत्तम करनी शब्द विचार, गुरते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए। जीवे दाता देवनहार, नानक हर नाम में लगे प्यार। गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, गुरते ज्ञान पाए जन कोए, गुरते बूझे सी जै सोए, गुरते सहज साच विचार, गुरते पाए मुक्त द्वार, पूरे भाग मिले गुर आए, साचे सहज साच समाए रहाओ। गुर मिले तृष्णा भजन तृष्णा अग्न बुझाए, गुरते शांत पवसे मन आए, गुरते पावित पावन सच सो सच होए। गुरते शब्द मिलावा होए, बाज गुरु सब भरम पुलाई, बिन नावे बहुता दुख पाई। गुरमुख होवे सो नाम ते आई, दर्शन सचे सच सची पत होई, किसनो कही है दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिला।

सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब किछ साचा आपे आपे। कर्म होवे सतसंग मिलाए, गो हर गुण गावे बैस सो थाए रहाओ, जलो एह जेहवा दूजे पाए, हर रस हर रस ना चखे फीका आलाए। बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए, रसना हर रस चाखिया सहज सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए, साची साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल धार। नाम समावे जो पांडा होए, उंदे पांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, एक गावत रहे मन साध न पाए, होमे बिच गावे बिरथा जन्म गावे बिरथा जाए। गावन गावे जिन राम नाम प्यार, साची बाणी शब्द विचार, गावत रहे जे सतगुर पावे, मन तन राता नाम सुमा सुहावे रहाओ। इक गावे इक भगत करे, नाम ना पावे बिन असने, सच्ची भगत गुर शब्द बिया प्यार, अपना पिर राख्या सदा उर तार। भगत कर है मूर्ख आप जनावे, नच नच टपे बहुत दुख पावे, नचिए टपिए भगत न होए, शब्द मरे शब्द मरे भगत पाए जन सोए, भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत बिच हो आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब बिद जाने।

गुर प्रसाद हर वसै मन आई रहाओ, गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सो जी पावे। मन मैं मत मैं गल मिकदारा, गुर अंकस मार जीवा लणहारा। मन असाध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए। गुरमुख एह मन लाया सवार, हों मैं बिच हों तजे विकार। जोत राखियन मेल मिलाए, कदे न बिछड़े शब्द समाए। अपनी कला पे ही जाने, नानो गुरमुख नाम पछाणे। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, होमे बिच सब जगत जग बौराना। दूजे पाए भरम पुलाना, बहु चिंता चित बै आप ना पछाना। तंदा करत्या अंधन विहाना, हिरदे राम रम हो मेरे पाई। गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ, गुरमुख हृदय जिन राम पछाता। जग जीवन सेब जुग चारे जाता, हमें मार गुर शब्द पछाता। कृपा करे प्रभ कर्म विधाता, से जन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए। तावत बारजे ठाकर हाए, नाम नव नित गुर ते पाए। हर कृपा ते हर वसे मन आए, राम राम करत्या सुख शांत शरीर। अंतर वसे न लागे जम पीर, आपे साहेब आप विधि।

सौख समहो बिसराम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।

उच्च से उच्चा भगवंत सकल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सुभाग्याकारी तुमरी गत मैं तुम्हें जानी नानक दास सदा कुरबानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लग आन सुहाय नानक हुन से जे बिन आवे पत जाए अष्टपति दस वस्तु लै पासे पावे एक वस्त कारण भी खुट गुवावे एक पीना दे दस पिहले तो मूड़ा को कहां करे जे ठाकर सो ना ही चारा ता को की जय सब नस्कारा जा के मन लागा प्रमीठा सब सो तहो मन बूठा जिस जन अपना हुक्म नाया सब थोक नानक तिन पाया अगंस अपनी दे रासो खात पी बरते नंद उलासो अपनी अमान कछ बासिले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता पी खोवे बर उसका विश्वास न होवे जिसके बस्त जागे राखे प्रभ की आज्ञा माने माथे उस ते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पात्मा के हित सर्प होवत जान अनेत बिरखी साया सुसंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रो तो अंध धार बटाऊ सो जो लावे ने ता को हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रस तस्ते असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया भीखस्ता मिथ्या त्रोह मो अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान आस्ते पग साध के सरन नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या संपनिंदा सुने मिथ्या हथ पौधर कोहिरे मिथ्या नेत्र पेख पात्यार उपाद मिथ्या रसना भोजना स्वाद मिथ्या चरण पार विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लित बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर नाम ले बिरथी साध की आर जा साहिब बिना के हो सुचा बिरथा नाम बिना तुनंद मुखा मंता के दुर्गंध बिन सिमरन नैन मिथा बेहाये मेघ बिया जो खेती जाए गोबिंद भजन में बिरथ सा काम जो कृपा ते नारदाम तन तन ते जे जन जे कट बसिया नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवरक शवर कमात मन प्रीत मोगन लापत जन नार प्रभु परबीन बाहर भेख न काउ पीन अवर उपदेश आप न करे आव जाव जन्मे मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सिख तरे संसार जो तुम भाने तिन प्रजाता नानक उंजन चन पराता करो बेनती पार बंसा जाने अपना किया आपे मने आपे आप करतन बेरा किसे दूज नाथ किसे बजावत नेरा उपास अनु साव ते रहत साव कश जाने आत्म की रहत जिस भावे तिस लै लाए थांत नियंत्र रह समाए सो सेवक जस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मो बिन सजाय अमेव नानक प्रभ सन्नाती कर प्रसाद गुरदेव अष्टपति जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए ते ठक रुख मन माहे जे प्रसाद सकंतन लावे तिसको सिमत परमत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह सुख बसना आठ पैर सिमरो तिसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्यागे त्या मन जोग जे प्रसाद पाप टंबर हटावे तिसे त्याग तव लभावे जे प्रसाद सुख से स्वीजे मनाठ पै ता का जस खीजे जे प्रसाद तु सबको माने मुखता को जा तु मुखता को जस रसम बखाने जे प्रसाद तु रहता धर्म मन सदा त्यह केल पा ब्रह्म प्राप जे जब दरगे मन पावे नानक पत सेती कर जावे जे प्रसाद रोकन चंदेही लिहला तो राम स्नेही जे प्रसाद उहला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद सुलत ठाके मन सरनी प्रभ ठाकुर पताके जे प्रसाद तुत कोना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभुचे जे प्रसाद पाए दुलभदे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद खंड परी जय मत सिमत को वास की जे प्रसाद असव अस्त असवारी मन तिस तो कबू ना बसारी जे प्रसाद बख मिलकतना रख प्रोई प्रभ अपने मना
जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सा तिसे त्याय तिसे त्याय जो एक लखे इहां उहां नानक तेरी रखे जे प्रसाद करे पुण बदान मन आठ पैका तिसका त्यान जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस तब को सा सा चतारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिम सदा अनूप जे प्रसाद ते निकी जात सो प्रभ सिम सदा दे रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेखे बसमाद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सो सहजे बसना जे प्रसाद का चले जे प्रसाद पूर्ण फले जे प्रसाद परमत पावे जे प्रसाद सो सह समावे ऐसा प्राप्त अवरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तो प्रगट संसार तिस प्रभ को मोहना मनो बसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मुतुता को जाप जे प्रसाद ते काज पूरे तिस जाम सदा हजूरे जे प्रसाद तो पावे साच रे मन में तुता सो राच जे प्रसाद सविगत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सोनाओ आप गुआ से हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रकाश प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसे मर सोए प्रभ दाते मत उत्तम होए श्रमदान प्रभ तेरी माया आपो कछु न कन्हु लया जित जित लाभ तित लागे हर नाथ नानक इनके कछु ना हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे समुता होए सुन मीता नान बनवंता साज नाके चज कथा अष्टपदी साख संग मुख जल हो तो सा सम सगली हो तो सा समिटे अभिमान सा स प्रगट सु ज्ञान साख संग पूजे परम नेरा सा संग सब होत नबेरा साख संग पाहे नाम रत्न साख संग एक ऊपर जतन साख महिमा बने कौन प्राणी नानक साथ की शोभा परम समानी साख संग गोचर मिले सा संग सदा प्रफुल्ले सा संग आवे बस पहुंचा सा संग अमतरस पहुंचा सासा हो सब की रेन सासा मनोहर बैन साख सन कथु तावे सासा अस्त्र मन पावे साख संग माते पेन सा संग नान प्रासु प्रसन्न साध संग दुष्मा सा मीत साधु के संग महापनीत सा संग सुनि बैर सासा न बिगा बैर साख संग नहीं को मंदा सा संग जाने परमानंदा सा संग नहीं हूं ताप सा संग तजे सवाप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साख संगना कबू तावे सा संग सदा सुख पावे सा संग बस्त गोचर लहे साधु के संग अज सहे साख संग बसे थान उचे साधु के संग मैल पहुंचे सा संग दृढ़ सा धर्म सा संग केल पासम साख संग केल पार ब्रह्म साख संग पाव नाम निदान नानक साधु के कुर्बान साख संग सा कुल उधारे सा संग सज मीर कुनस्तारे साधु के सो संग पावे साधु के संग सो धन पावे जिस तंत सबको बरसावे सा संग तरहमरा करे सेवा साख संग शोभा सो देवा साधु के संग पाप लैन सा संत गुण गायन साख संग सर्व थान गहम नानक साख संग सफल जन्म साख संग नहीं कशकाल दर्शन पेट तो निहाल सा संग कुलवत हरे सा संग नरक पर हरे सा संग इहां सोहेला सा संग बिरसत मेला जो इच्छे सोई फल पावे सा संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म साधर बसे नानक उतरे सार सो रसे साख संग सुन हर नाओ सा संग हर के गण गाओ सा संग मंत बिसे सा संग सर्प निस्त्रे सा संग लगे प्रमिठा साधु के संग घड़का डिठा सा संग पै आज्ञाकारी सा संगत पै हमारी सा संग मिटे सब रोग नानक साथ पेटे संजोग।

अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जस करे प्रभाप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्मज्ञानी को खोजे मेसर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा उदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथा न जाया दे आखर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नान ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्मज्ञानी सत जीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख बदाता, ब्रह्मज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब परहाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नान ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनि श्लोक, उधारे जो अंतर नाम सर्व पेखे भगवान, निमक निमक ठक नमस्कार, नानको पर सगल निस्तारे, अष्टपति मिथ्या नहीं रसना परस, मन में प्रीत निरंजन तरस, मन में प्रीत निरंजन दस, परत्या रूप न पेखे नेत्र, साध कटा संसंहेत, करना सुने काहू की निंदा, सप्ते जाने आपस को मंदा, गुरप्रसाद भिक्षा पर हरे, मन की भाषणा मन ते टरे, इंद्री जत पाइन दो तेरे तो नानक कोट मदे को ऐसा अपरस, वैष्णो जस उपर सुपरसन, विष्णु की माया तो होए पहन, कर्म करत होवे न कर्म, तिस बर का निर्मतरम, काहू फल की इच्छा नहीं बासे, केवल पकित संग्राचे, मंत्र न्यंत्र सिमन गोपाल, साव ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़े अवरा नाम जपावे, नानको वैष्णो परमत पावे, भगौती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दो का संग, मंते बिनस सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मलख होवे, तिस पोपति की मत उत्तम होवे, भगवंत की टायल करे नितनीत, मंत्र अपे बिस्न प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम न आत्म है सोदे, राम न सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडप है जो नावे, वेद प्रांत सिमद बूझे मूल, सुख में जाने असूल, चौवरना को दे उपदेश, नानको पंडर को सदा उदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तसी कथ होए, सा संग पावे जन कोए, करके पाय अंतर उदारे, पस प्रेम उत्पात्र को उतारे,

अहंकार, कई बार पस्यो पसार, सदा सा एक अहंकार, कई कुर्की ने बोपात, प्राप्त होए प्रमे समात, ताक अंत न जाने कोई, आपे आप नान प्रसोए, कई कोट पार नाम के दास, तिन हो तत् प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहर एको नेत्रे, कई को नाम रस पीवे, अमर पै सदे जीवे, कई को नाम गुण गावे, आत्म रसो सह समावे, अपने

अस्पताल नाम गतारे सकल कार नाम गतारे पुरगया सब पवन नाम के संग उदय सुन सरवण कार कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में शुभ जनगत पाए रूप सत जाक सत स्थान पुरख सत किल प्रधान सत करतू सत सत जाके बाणी सत पुरुषम मह समानी सत कर्म जाके रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मय जिसे बजाय तिसे सब पले सत नाम प्राप्त कर सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाए सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत निर्द बूझे जे कोय नाम जा ताई गत होए आप सत किया सत सत आपे जाने अपनी मितगत जिसके सिष्ट करने हार अवरना बोझ करते विचार करते किमत जाने किया नानक जो तत पावे सो वर्तिया बिस्म बिस्म भय बिस्मा जन बोझा ते सा सुहा प्राप्त के रंग राज रहे गुर के बचन पदार्थ लहे उदाते दो काट नहा जाके संग तुर संसार जनका सेव सोबड़ भागी जनका संग एक लेव लागी।

आयु शरण दीन दुख भंजन चितवां तुमरी ओर आपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरुश्वर जी साध संगत जी हो सतगुरु जी की अपार बख्श रहमत दर कर दे सेव भाई करणवीर सिंह जी भैन जी जसबीर कौर सेवकों वालों अपने भचंगी बेटे काका जय सिंह के 18वें जन्मदिन की खुशी अंदर अते बच्चा ग्रेजुएट होया हुए सतगुरु जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना करते हुए सेवकों वालों अमृतमयी बाणी श्री सुखमनी साहिब के जाप करवाए उपरंत कीर्तन होए उपरंत आप सारिया ने संगती रूप के पचंगी की चढ़ती कला वास्ते अते समूह परिवार की सुख शांति गुरु चरणों के अरदास बेनती की है। सतगुरु जी रहमत करन समूह परिवार को दरों करो नामदान सिखी सिदक भरोसा दान सतगुरु जी चढ़दियाँ कलां की दात बख्शिश करन। सो सारिया आईया संगतां दा परिवार वल्लों धनवाद बेनती है। कड़ा प्रशादी देख लैण तो उपरंत गुरु के लंगर तैयार ने आप सारिया ने लोड़ अनुसार छक के जाण की कृपालता करनी। सो बेनती प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।